असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भाव साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक से

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का

आखह पढ़े करह बखियाण। आखह ब्रह्मे आखह इंद आखह गोपी तै गोबिंद आखह ईसर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सदी वडियाई, ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग

माणे हैं, सौ नेड़ै तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकियां देह सलाइयां नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जां सौ तरे प्यारो।

अगम गोचर गलख पारा चिंता करो हमारी जलथल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब

हैं अछूत हैं, अलोक हैं अशोक हैं, अकर्म हैं अपर्म हैं, अजीत हैं अपीत हैं, अबाह हैं अगाह हैं, अमान हैं निदान हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। भुजंग प्रजात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरम परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नाने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता, अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्त सत्तामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्तं निर्नाथे, नमस्तं प्रमाथे, नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे, नमस्तं अकाले, नमस्तं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व यंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे, समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिदं निवासी, चरपट शंत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल शंत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख, आद पुरख उदार मूर्त जोन आद अशेख, देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग, जतर ततर दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्र बकर फिर चतर चक मान ही पुरतीन, लोक चौदह के विखय जग जाप ही जेह जाप, आदेव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप, परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचो सुजंभव गढ़न पंजनहार, कालहीन कला संयुक्त काल पुरख आदेश, धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख भेस, अंगरागना रंग जा कह जात पातना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन याद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख, सर्वशास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना आवई बहुचित,
मधुपार शंत प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनासा जान बाहो साहान शाहो राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निरकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वापरण अड्य अंडंड बाड्य चाचरी शंता प्रसाद गुबिंदे मकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे भुजंग प्रजात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथीस दिश दृश अकृश भगवती छंद तप प्रसाद कथ ते के आ शिज देस के आ भिज भेस के आ गंज करम के आ भंज भरम के आ भिज लोक के आ दित सोक के अवतूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कै रहीम रिहा कै के पाक बेऐब है के गैबल गैब है के अफवल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौन के सर्वत्र पौन के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र तराण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मान्य सदैवं प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीख तो मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबुल परस्त है

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम है।

ਗਾਦੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੋ ਸਰਬਾ ਨਰਾਗੇ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੋ ਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਸ਼ਮਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ। ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਂ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਏਮਾਂ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪਰਭੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਸ਼ਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤੋਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਧਿਰ ਧਰ ਧੁਰਾਸ ਅਜਾਨ ਵਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾ ਹੋ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਤੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਅਰਕਾਲਿਆ ਹੈ ਕਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲਕਾਰਣ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਣ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਿਆ ਹੈ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਅਕਿਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕਿਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕਿਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਆਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ
नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अमय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तल परणामे समस्तल परणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजित टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पगते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को मृतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
कोव बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपई बहर असुर का काठ समाथा श्री असकेत जगत के नाथा द्वितीय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर पुनराशिष का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पोहपन मृष्ट गगन ते पई सभ न्यान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा परजा तर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। तन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। ता तन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पैले। जेरी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। भाई इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ विश्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ विश्वास उस दे बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए विश्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते, क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे। भाई जे श्वास दे नाल तू जपिया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानस दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक स्वास ते जितने तक दुनिया में

आप बोलना चाहता है तो परमेश्वर की भक्ति कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए, चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई, उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

نام دے نال صدق بندا ہے، نام میٹھا لگدا ہے، اس لئی میرے نال چلو ہوتی مردان۔ سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں، انہاں کول چل کے بینتی کردے ہیں، کیونکہ مہاپرکھ تاں وہی ہے جیڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑ دے، جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے۔ राजा बड़ी निम्रता दे नाल सिदक दे नाल महापुरख बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले पास गया। ए ओ महापुरख सन जिहड़े जवानी विच फौज विच भर्ती सन, आप दी समाधि लगी रही सारी रात, ड्यूटी ते नहीं जा सके, इन्हां दी थां ते ड्यूटी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने दिती। ते जदों सवेरे गए ना, मन विच सोचदे हन भई नौकरी तो जाए ही जाए, पर अंग्रेज का राज है, पता नहीं दंड की मिलेगा, सजा की मिलेगी। ते जलो अगे गए तो अफसर बैठा होया सी, उठ खड़ोता अपनी खुशी तो, दस्त पंजा लिया ते कह लगा करम सिंह मैं सारी रात सारिया नू चेक कीता, पर जो ड्यूटी तू दिती है वो होर किसे नहीं दिती। उच्चारण करो श्री सात संगत जी, कम से कम अगे बैठे होया दी बिरती जरूर जोड़नी चाहिए है। समाधियां ला लो, ये गर्मी तुहानू लगेगी नहीं, जदों अमृत ठंडा पवेगा ना इस दे विच, बस जुड़ जाओ गुरु दे चरणां विच, उच्चारण करो श्री। एक दो मिनटां विच मैं आपनू बाणी दा प्रताप दसना। ए ओ महापुरख जिन्हां दी थां ते आप कलगीधर पातशाह जी ने सारी रात ड्यूटी दित्ती। राजा जदों पहुंचिया, महापुरखां ने आख्या जल पानी छका के संगत च ही रह चलो। महापुरख संगत विच आप भी पहुंच गए, समाप्ति हुई कीर्तन दी ते सुख सांद पुछन लगे। ता राजा रो पिया, महाराज भई निरंकार ने राज भाग दुनिया दे सुख बख्शिश कीते सी, पर नाल दुख भी बड़ा वड्डा ला दिता, पगंदर दा फोड़ा निकला है, ते आप कृपा करो। महापुरखा ने हाथ कीता गुरु ग्रंथ साहब वाल, ओ भले पुरछा ठीक तो उन्हें करना है। शरब रोग का छारे जपो, शरब रोग का औखद, साडा बच्चा बीमार होवे किवें डाक्टर वाल अखां जुड़ जांदियां, कोई मुकदमा पै जावे चंगे तो चंगे वकील वाल ध्यान जांदा है, पर ओ धनता दे योग हन जिन्हां दे हाथ जुड़ जांदे हन गुरु ग्रंथ साहब अगे। महाराज तू कृपा कर। महापुरुष कहन लगे राजन बाणी दे विच सारे ही अमृत हन, विच बाणी अमृत सारे, ते पंज पाठ जप जी साहब दे रोज करेगा। कह लगा महाराज मैं जरूर करांगा, क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही है। महापुरखा ने कहा भाई जल विच खलो जावी अमृत वेले, ते पंज पाठ जप जी साहब दे करने हन, उतना चिर उस फोड़े ते जल मलदा नहीं, गुरु कृपा करेगा। प्यारी सात संगत जी, महापुरखा दा वचन मनना, क्योंकि गल तां वचन मनन नाल है ना। अमृत वेले उठ के राजे ने जो नितनेम आरंभ किया, 40 दिनां दे अंदर अंदर पता ही नहीं लग्या फोड़ा कदे निकलिया भी सी के नहीं निकलिया। उच्चारण करो श्री, तिस साहेब की टेक सारे जपो, टेक गुरु के सिख नू बाणी दी है, सिख दा साहेब है धन गुरु ग्रंथ साहब। एक बार प्यार नाल आखो धन गुरु ग्रंथ साहब, ते फिर क्यों ना भाई दुख

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: 23 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलवे ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एवं टकरे

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन।

जपन विच ही सारे पदार्थ हन तां मैं फिर हुण जरूर जपांगा क्योंकि मां ने आख्या परमेश्वर आराधी है जिद्दू होइए पतत पुनीता बाहर चलिया करन तप। ध्रुव जी तैयार हो गए नाम जपन लई। पिता नूं पता लगा भाई ध्रुव छुटेरी उम्र विच जंगलां नूं जा रहा है तपस्या करन लई, लोग मैनूं की कहणगे, तपस्या करन दा तां मेरा वक्त है। ध्रुव नूं आख्या बेटा तू राज ते बैठ, तू राज कर, तपस्या करन लई मैं जांदा हां। ध्रुव जी दे मन विच ख्याल आया अजे नाम जपया नहीं, जपन दा फुरना बनाया ते राज भाग मिल रहे हन, ते जदों जपांगा उदों पता नहीं अकाल पुरख वाहिगुरु केड़ी पदवी देवेगा। और ऐसा उग्र तप कीता अज भी ध्रुव तारे दी सारे ब्रह्मांड दे तारे परिक्रमा करदे हन। कोई भी इस संसार ते आके हरी दा सिमरन करे नाम जपे 84 लाख जून सारे जीव जंतु ओस अगे हाथ बनी खड़े हन, सारे परिक्रमा करदे हन, हुकम विच चलदे हन, सारी प्रकृति उदे हुकम विच चल रही है जो भाई नाम जपदे हन। इसलिए हजूर ने ए मिसाल दिती आख्या जे जपना है तां ध्रुव ते प्रहलाद तरह जप। गुरु कृपा करे असी भी ध्रुव ते प्रहलाद तरह नाम जप के अपना जीवन सफल कर

हर जस श्रवण सुनावना, हर जस श्रवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया।

इस माया नू कोई नाल ना ले जा सकया। बाबा माया साथ ना होए, ए पिता जी ए माया साथ नहीं जानी। और हैरानी दी गल है कि इसे माया विच सारा संसार मोया होए। इस माया ने सब नू मोह रखिया है, किसे दा भी मन माया तो परे नहीं जाता। ते कोई विरला ही इस गल नू बुझदा है, समझदा है। तब पिता जी कहन लगे, नानक तेनू उपदेश देण वास्ते

और पिता ही पूरे हो गए। ओ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं अपना पुत्र समझदे सन और पुत्र ही समझदे रहे। इस तों वध कुछ ना समझ सके। उसी घर विच उन्हां दी भैण बेबे नानकी है तां उसदा भी रिश्ता भरा दा, पर ओ पीर भी समझ लिए, गुरु भी समझ लिए। उसी नगर विच उस नगर दा मालिक है राय बुलार, ओ भी गुरु नानक पातशाह नूं रब दा रूप समझदा है, पर मेहता कालू जी नहीं समझ सके, माता जी नहीं समझ सके।

अज कल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पाया सौदागरी करना पाया उस तो वेल नहीं। बेटा तू कि सौदागरी करना पे मैनू तो वेला ही नजर आना और ना तेरिया गल्ला।

सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। तां किसी ने एक सलाह दिती कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेखिया कि किसी कोल भी पैसा नहीं, तां एक नौजवान मन चला अपनी मां दे पास जाके रोण लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा है ते बादशाह दी बेटी दा रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तो उम्र गवाई है इस राज विच, कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तो गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तू की उम्मीद करदा है, झूठी गल ते इतबार ना करदा। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रखिया हो, बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता ने दफनाया सी तो उसके मुंह विच एक पैसा रखिया, कबर खोद लै उसके मुंह विचों कढ लै, वो तो हुण रस्म पूरी हो गई, जे वो तैनू मिल जावे। कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दिती, उसके मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया, उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

कुछ देर बाद फिर आए। उसके पुत्र मिले, पूछा भाई वो बैल किथे? कह लगे जे तुसी गए तो दूसरे दिन चढ़ाई करेगा। यह गुरु जी का कौतक, उसका बेड़ा पार करना सी। नहीं तो पता नहीं कितने कितने बरे बैल दियां जोना भोगदा, कितनिया चोटा खांदा, भाई सच्चे पातशाह टुट पए से उस खा मुठा पार करने वाली गई। जिसने सतगुरु दयाल हो जावे फिर उसने पाप गुण नहीं देखदा, गुण अवगुण नहीं देखदा। गुरु जी दयाल हो गए, फिर पहुंचे पूछया वह बैल किथे? कहन लगे जी चढ़ाई कर गया, मर गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि हुण तां घर अंदर कुत्ता बन के पहरा दे रहा है। बैल की जान तो कुत्ते की जान ज्यादा। मरदानिया हुण तां आपां नूं घर जाना पवेगा, क्यों गरीब नवाज? मरदानिया हुण तां वो बिरग कुत्ता बन के पहरा दिंदा है, घर विच रहिंदा। चल पे घर आए, प्रशादे की बुरकी पाई, कुत्ता नेड़े आया। गुरु जी ने सिर ते हाथ रखा, उसने सोझी हो गई कि मैं कौन हां ते ये कौन हां। गुरु जी ने आख्या क्यों भाई? मोह दियां चोटां खांदा खांदा इतनी गंदी जून विच पहुंच गए, हुण तेरा पारो तारा कर दईए। उसकी आत्मा चो आवाज आई, मैनू हाले मुक्ति की लोड़ नहीं, ये मेरे पुत्र बड़े अवेसले ने, ये बड़े अवेसले ने पुत्र मेरे। दिन भर रात सारी सुते रहिंदे ने, अद्धे दिन होए तक जागदे ने। पिछवाड़ा नंगा है, चोर तां एक रात च लुट के लै जाण जे मैं पहरा ना दे। सारे बजुर्गों ने ऐसा ही खदशा रहिंदा है, भावें कोई कुत्ते दी जोन विच जावे जा ना जावे, पर मनुष्य जामे विच ही पहरा ही तां दिंदे ने। कई बजुर्ग पुत्रां धीआं नूं वेल नहीं कह देंदे ने बच्चों का ध्यान रखना, फिर कह देंदे ने हुण बच्चों छुट्टियां ने असीं घूम फिर आईए, तुसीं घर ख्याल रखना। पहरे तो सिवा ड्यूटी केड़ी रह जांदी? पहरा ही दिंदा है, पर ओहो जे बजुर्गों नूं भी कहीए कि हुण नितनेम करिया करो तां उन्हां दे पास भी समां नहीं। क्योंकि इन माया जग मोह। गुरु जी कहन लगे चंगा भाई तेरी मर्जी, होर छोटा खा ले। फिर गए, काफी समय बाद आए। गुरु जी ने पूछया भाई वो कुत्ता कित्थे जिहड़ा घर विच? आख्या जी तुसी गए ते थोड़े दिन बाद शरीर छड गए। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि कुत्ते तो मर के उसकी आत्मा एक सर्प विच प्रवेश की थी। सप बनिया होया सी, वो एक बार पंगूड़े विच खेल दे बच्चे वल जा रहा सी, पड़ोसियां ने मारिया। बाणी च लिखिया है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जी मरे, ऐसा चिंतन करदिया होया मौत हो जावे, पैसा पैसा सिमरदिया मौत हो जावे। तां कहंदे ने सर्प जोन वन वाला उतर, उसनू सप दी जोन लैनी पवेगी। ते दूसरी गल, गुरु साहिबां ने सहस्कृति दे श्लोकां विच यह दस दिता कि जिसने गुरु नहीं धारण किया उसनू भी इन्हां जूनां विच जाना पवेगा। गुरमंत्र हीणस जो प्राणी, त्रिगंत जन्म भ्रिष्ट ने, कुकरै सूकरै गर्द वै काकै सर्प ने फुल खल। कुत्ता बनना पवेगा, सूर बनना पवेगा, खोता बनना पवेगा, सर्प बनना पवेगा, कां बनना पवेगा, ऐसियां जूनां विच जाना पवेगा।
جس نے گرو نہیں دھارن کیتا، بھئی گرو بھی دھارن کر، جتنی دیر گرو نہیں دھارن کر دے تا سکھی نہیں کما سکتے، سکھی دی رہت مریادا اسی دن شروع ہوئے گی جدو تسی پہلا قدم رکھیا، امرت چھک لیا گرو دھارن کر لیا۔ امرت بھی چھکایا جانا ہے، امرت چھکاؤن واسطے اپنے نام گردوارا صاحب ستکار جو گیانی جی پاس جان جتھے ہن بعد ہمیں وچار کر کے دس دیتا جاوے گا۔

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया सारे हिंदुस्तान के बीच कोई

वो कवियां का बड़ा मान कर दे सुने पूर्ण बवंजा कवि रख दिया है। सुजान चंद मैं तेरा दोस्त हूं,

जंगल विचों जड़ियां बूटियां लिया के दवाई बना के थोड़ी सेवा करा। वो पिंड के लोग खड़े होते ही हाँ

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता करता है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

इस उम्र में तरेंगे, जुबान भी सफली होगी और मन भी पवित्र होगा। और जितने माई पाई बैठे हो, कोई भी रसना खाली ना रवे, वाणी का असर विच

सिर्फ संगीता समय सुजान चाहते इस पिंड वाले चलते पिंड के लोगों को पता लगा सुजान चाहते पता

काका, मेरी नूह दे पेट विच बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन को दवाई दे ते सुजान चल सोच ले, जे माई नाल जावां ते फिर दर्शन नहीं होना। अगे बड़ा तरस है, पता नहीं और कितना तरसना पवेगा। संगता एक लंघ दी है।

माई नाम चलना के दर्शन रह जाए पर फिर को बचा रहे अपने आप को कह रहे कोई सुजान चाह जब तू आनंदपुर साहब गया सैन ते कलगियां वाले पिता ने किया सी दौड़ जा तू दौड़ में तू नहीं आया तेनु कलगियां वाला उठे लेके आया जिते तेरी लोड़ सी तेनु सेवा वास्ते भेजी चल सुजान चंद

बिना अमृत जाए है ते कितना समा बाकी है कि तू जाने पर बाकी का समा अमृत छक के मिटने में बन के बाकी का समा आप बताएगी और अमृत कोई सजा नहीं है ये रहमत है। कुछ लोग डर जाते हैं

माता का मुख्य आशी सहनेमा जेड़ा अमृत छकेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उसका पिता ते तुसी उससे माता हो। आओ माता साहब को भी गोद बैठ कलगियां वाले पिता का प्यार।

तो उतना चिर ही सुखी बस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तैनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदों कोई भी तेरी बात नहीं पुछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच पाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां ता इन्हां दोनों नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे कि चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्नां विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे।

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे कि पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि कृपा करो सानू ए सेवा दा मौका दे। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख

दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन सहकलगी तर पातशाह बाग विच आए तां एक फुल्लां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती। आखिया, तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती की थी, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आपे चरणा नाल प्यार करदे हन, पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उन्हां दी। ता साहिबा ने एकदम अखां बंद कर लईआं ते मुख विचों साहिबा दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके सह वापस चले गए। ता केसरा सिंह ने सोना ते मोना नूं दसिया कि साहिबा ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पातशाह सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन वैराग विच आ। अच्छा पातशाह, आप दी रजा है, जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हन। नैन तरसन दर्श परस